0: ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕਲ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ US ਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੁਪੀ ਹੈ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਖਬਰ
1: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਈਰਾਨ ਕੀ ਆਰਥਿਕ ਔਰ ਸੈਨਿਕ ਤਾਕਤ ਕੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਥ ਹੀ ਦੇ ਡਾਲੀ ਈਰਾਨ ਕੋ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ੋ ਕੋ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਆ ਦਿਆ ਜਵਾਬ ਔਰ ਕਿਆ ਹੈ ਟਰੰਪ ਕਾ ਇਰਾਦਾ ਬਤਾਏਂਗੇ ਕਾਰਯਕ੍ਰਮ ਮੇਂ इसराइली सेना ने इस मामले के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की जिसमें कार पर हुई शूटिंग में गई थी 5 साल की फलस्तीनी बच्ची की जान रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर किया हमला कम से कम 15 लोगों की जान गई यूक्रेन आखिर क्यों नहीं लगा पा रहा है इन हमलों पर रोक क्या है वजह डिस्कस करेंगे बुलेटिन में बीबीसी अफ्रीका आय को मिले ऐसे सबूत जिनसे लगता है पता कि दक्षिण अफ्रीका के एक पुलिस जासूस की हत्या देश की स्पेशल फोर्सेस ने की दिखाएंगे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज की वजह से आखिर कैसे हो रहा है वेल्स को फायदा दिखाएंगे प्रोग्राम में स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में मैं हूं सारिका सिंह ईरान और अमेरिका में युद्ध अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ है और ट्रंप ने अब ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध का भी ऐलान कर दिया है इस सोमवार को दोनों देशों के बीच 60 दिनों के सीज फायर की डेडलाइन खत्म हुई थी लेकिन जंग खत्म होने के आसार नहीं नजर आ रहे बस जंग के तरीके बदल रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के खिलाफ नए आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे और सिर्फ ईरान ही नहीं कोई भी देश जो ईरान के साथ बिजनेस करेगा या उसकी मदद करेगा उसके खिलाफ कड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाएंगे ट्रंप ने कहा कि जो भी देश अपने वित्तीय संस्थानों कारोबारों हवाई अड्डों और सरकारी संस्थाओं के जरिए ईरान को किसी भी तरह की मदद देगा उसे खुद भी बहुत बड़े आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक्स पर लिखा कि अमेरिका की इकोनॉमिक डी डे की धमकी उसकी अपनी आर्थिक मुश्किलों से ध्यान हटाने का एक तरीका है जिससे आगे अमेरिका को और हार का सामना करना पड़ेगा इस पर और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी मॉनिटरिंग से सोरोश निगाहदारी
2: अब तक ईरानी मीडिया और ईरानी अधिकारियों की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो काफी खड़े रुख वाली हैं वो दो बातें कह रहे हैं पहली ये कि इस तरह की धमकियां और आर्थिक दबाव डालने की बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ सैन्य संघर्ष में नाकाम रहा है और दूसरी बात ये कि उनके मुताबिक ये अमेरिका की अपनी आर्थिक समस्याओं से ध्यान भटकाने की कोशिश है जिनमें से कुछ समस्याएं इस जंग की वजह से पैदा हुई हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और उनके डेप्यूटी ने भी एक्स पर पब्लिक मैसेजेस में प्रतिक्रिया दी है उन्होंने कहा कि आर्थिक दबाव की ऐसी कोशिशें पहले भी की जा चुकी हैं और आजमाई जा चुकी हैं, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ उनका कहना है कि इससे सिर्फ ईरान की तरफ से और ज्यादा प्रतिरोध देखने को मिलेगा
1: और इसराइली सेना ने पहली बार माना है कि साल 2024 में गाजा में उसके सैनिकों ने उस कार पर गोलीबारी की थी जिसमें 5 साल की फलस्तीनी बच्ची हिंद रजाब और उनके परिवार के 6 और लोगों की मौत हुई थी उन्हें बचाने के लिए भेजे गए 2 पैरामेडिक्स को भी गोलीबारी में जान चली गई थी IGF का कहना है कि उसने इस मामले की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है बीबीसी संवाददाता लूसी विलियमसन की इस रिपोर्ट में हिंद रजाब का इमरजेंसी सर्विसेज को किया गया वो फोन कॉल भी शामिल है जो आपको परेशान कर सकता है
3: 2 साल से ज्यादा वक्त तक इसराइली सेना इस बात से इनकार करती रही कि उसने हिंद रजाब और उनके परिवार के 6 लोगों के साथ साथ उन्हें बचाने गए एम्बुलेंस क्रू को मारा था

0: थी, जिससे उसके अंदर मौजूद दोनों पैरामेडिक मारे गए। कई दिन बाद जब इमरजेंसी टीम्स को घटनास्थल तक पहुंचने की इजाजत मिली तो दोनों गाड़ियों में मौजूद सभी लोग मारे जा चुके थे। हिंद की माँ विसाम ने उस दिन हमसे बात की थी।
1: जिस भी व्यक्ति ने मेरी आवाज सुनी, मेरी बेटी की मदद के लिए पुकार सुनी और फिर भी उसे बचाने नहीं आया, मैं कयामत के दिन ऊपर वाले के सामने उससे सवाल करूंगी। नेतन्याहू, बाइडेन और वो सभी लोग जिन्होंने हमारे खिलाफ साजिश में साथ दिया।
0: इसराइली सेना ने ये भी कहा कि वो एक साल बाद गजा में अपने सैनिकों के हाथों मारे गए 15 इमरजेंसी वर्कर्स की हत्या की जांच कर रही है। उनकी कुचली हुई गाड़ियां और बॉडीज रेत के नीचे दबी हुई मिली थीं। एक यूनिवर्सिटी की अगुवाई में हुई जांच में कहा गया कि कुछ गोलियां 4 मीटर से भी कम दूरी से चलाई गई थीं। सीजफायर के करीब एक साल पूरा होने के बाद भी गजा में हवाई हमले जारी रहे। बीते 2 दिनों में हुए हमलों में 17 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसराइल का कहना है कि उसने हमास के कमांडर्स को निशाना बनाया है। युद्ध विराम समझौतों और शांति के वादों से निराश गजा के कई लोग इस बात पर भरोसा नहीं करते कि इसराइली सेना खुद अपने खिलाफ निष्पक्ष जांच करेगी। बीबीसी संवाददाता लूसी विलियमसन की रिपोर्ट।
2: अब रुख रूस यूक्रेन जंग का, जहां दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले जारी रखे हुए हैं। कल रात पर रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला किया है और इसमें कम से कम 15 लोगों की मौत हुई है। इस हमले में अपार्टमेंट ब्लॉक और वेयर हाउसेस को निशाना बनाया। वहीं बच्चों के एक अस्पताल और एक स्कूल भी तबाह हुआ है। इसमें 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के ज्यादातर हिस्से में एयर रेड के सायरन बजे। देश के दूसरे हिस्सों में भी हमले हुए। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मौतें एयर डिफेंस मिसाइल की कमी के कारण हुई।
3: एक रॉकेट छत से टकराया। आवाज इतनी तेज थी कि तुरंत दीवारें और दरवाजे उड़ गए। धुएं के गुब्बार, आग की लपटें, चीख पुकार, रोने और निराशा का माहौल था। हमारी इमारत में 2 लोगों की मौत हो गई।
1: जब हमला हुआ तो मैं बाथरूम में चली गई, फिर वापस आई तो हर तरफ धूल थी। हमला बहुत जोरदार था, सब कुछ उड़ रहा था। बेड प्लास्टर के मलबे से भर गया था। फ्रंट डोर कॉरिडोर में गिर गया था।
2: और यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद बीबीसी संवाददाता डैन जॉनसन इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं।
4: ये कीव के उन इलाकों में से एक है जिसे कल रात निशाना बनाया गया था। इस इलाके में कई अपार्टमेंट ब्लॉक्स तबाह हो गए हैं। इमरजेंसी वर्कर ने मुझे उस इमारत की छत से ली गई तस्वीरें दिखाई हैं, जिसमें दिख रहा है कि एक मिसाइल छत से टकराकर वहां धस गई। अंदर से बिल्डिंग तबाह हो गई और उसने अंदर मौजूद फ्लैट्स को पूरी तरह तबाह कर दिया। मैंने बिल्डिंग से सुरक्षित निकाले गए कुछ लोगों से बात की। उन्होंने बताया कि वो कल रात बहुत डरे हुए थे। उन्हें पता है कि यहाँ उनके कुछ पड़ोसियों की मौत हो गई। हमें बताया गया था कि अभी भी उस इमारत के अंदर कम से कम 2 शव हैं। रेस्क्यू और रिकवरी टीम पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं कोई अंदर फंसा तो नहीं है, और वो बॉडीज को भी खोज रहे हैं।
2: हाल के महीनों में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ हवाई हमले बढ़ा दिए हैं। वो यूक्रेन के पास बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने वाले इंटरसेप्टर की कमी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू हेवन में प्रोफेसर मैथ्यू श्मिट के मुताबिक हालात के जल्द सुधरने की उम्मीद भी कम है।
5: यूक्रेन के पास मिसाइल इंटरसेप्टर्स खत्म होने वाले हैं। वहीं रूस जिस मिसाइल से कीव पर हमला कर रहा है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। यूक्रेन के पास स्ट्रेटेजिक साइट्स के लिए शायद कुछ ही इंटरसेप्टर्स बचे हैं। इन्हें तब तक इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जब तक इसकी बेहद जरूरत ना पड़े। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनका मानना है कि सर्दियों से निपटने के लिए यूक्रेन को करीब 300 PAC-3 इंटरसेप्टर्स की जरूरत है। पिछले साल इन इंटरसेप्टर्स का कुल प्रोडक्शन सिर्फ 600 था। इस कारण ये समझना बेहद मुश्किल है कि यूक्रेन अपनी जरूरत को तुरंत कैसे पूरा करेगा। नेटो अपने सदस्य देशों से कुछ इंटरसेप्टर्स जुटाने की कोशिश कर रहा है। कनाडा ने कुछ देने का ऑफर दिया है, लेकिन अभी ये पता नहीं है कि ये संख्या कितनी है। ये भी पता नहीं है कि वो कितनी जल्दी यूक्रेन को मिलेंगे। कल रात जैसे हमले हुए उसे जब हम देखते हैं तो साफ दिखता है कि इंटरसेप्टर्स अभी यूक्रेन में नहीं पहुंचे हैं।
2: और बीबीसी अफ्रीका आई को ऐसे कई सबूत मिले हैं जिनसे संकेत मिलता है कि दक्षिण अफ्रीका के एक पुलिस जासूस की हत्या देश के स्पेशल फोर्सेज ने की थी। फ्रांस माथेपा इस बात की जांच कर रहे थे कि एक संदिग्ध जो तथाकथित इस्लामिक स्टेट समूह के चरमपंथी के लापता होने में विशेष बदलों की भूमिका है या

0: इसके बाद 6 अगस्त 2023 को वो अपनी कार में मृत पाए गए, उन्हें गोली लगी थी। अब माथिपा के परिवार समेत उनके पूर्व सहकर्मी न्याय की मांग कर रहे हैं। जासूस की हत्या के संबंध में विशेष बलों के 7 सैनिकों और एक अन्य शख्स पर मुकदमा चलाया जाना है। इनमें से 7 लोगों पर 4 अन्य आरोपियों के साथ मिलकर संदिग्ध आईएस चरमपंथी का अपहरण और हत्या करने का भी आरोप है। सभी आरोपियों ने इन आरोपों से इनकार किया है। दक्षिण अफ्रीका से देखिए बीबीसी संवाददाता डीनो मेहता ने की रिपोर्ट।
1: उनके पास इस मोहल्ले के हर शख्स के लिए वक्त था। यहाँ न गेट था, न बिजली वाली बाड़, कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमें लगता था कि वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं।
2: फ्रांस मथीपा जोहानिसबर्ग में वरिष्ठ पुलिस डिटेक्टिव थे। साल 2023 के अगस्त में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनके परिवार के मुताबिक वो एक समर्पित पति और पिता थे।
1: हमें लगता है कि अब हमारी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है और हम सुरक्षित भी नहीं हैं।
2: मथीपा अब्देला अब्दीगा नाम के व्यक्ति के लापता होने की जांच कर रहे थे, जिस पर आरोप था कि वो तथाकथित इस्लामिक स्टेट का लड़ाका था। टेररिज्म काउंटर पुलिस के एक पूर्व प्रमुख का मानना है कि मथीपा अब्दीगा के लापता होने की असली वजह का पता लगाने के काफी करीब पहुंच गए थे। उन्होंने बताया कि लापता होने से पहले अब्दीगा को खुफिया जानकारी जुटाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन वो मानते हैं कि उसे संभालने वाले लोगों ने उसे कमतर आंक लिया था।
3: मुझे ये साफ हो गया था कि वो अपने तरीके से काम कर रहा है। आप उसे गुट में शामिल तो कर लेते हैं, लेकिन ठीक से काबू नहीं कर पाते। मुझे यकीन है कि दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों ने उसे कमतर आंका था।
2: मथीपा को शक था कि दक्षिण अफ्रीका की स्पेशल फोर्सेस, जो एक एलीट मिलिट्री यूनिट है, उसने अब्दीगा को एक शॉपिंग सेंटर से अगवा कर लिया था। मथीपा सैन्य अधिकारियों से मिले, जो उस यूनिट की गतिविधियों की जानकारी देने के लिए राजी हो गए।
4: उन्होंने कहा था, ब्रिगेडियर आप जानती हैं, ये लोग मुझे मार डालेंगे, मैं मरने वाला हूँ।
2: अब बीबीसी अफ्रीका उन पलों की जानकारी दे सकता है जिन्हें मथीपा के आखिरी पल माना जा रहा है। 6 अगस्त 2023 को उस मुलाकात के 2 दिन बाद मथीपा इस पेट्रोल स्टेशन पर एक ऐसे शख्स से मिलने पहुंचे जिसे वो एक विसल ब्लोअर समझते थे, लेकिन वहां कोई नहीं आया। बीबीसी को मिली तस्वीरों में बाद में मथीपा की कार दिखाई देती है जिसमें उसके पीछे एक BMW चल रही थी।
5: हमें एक भरोसेमंद सूत्र से जानकारी मिली कि उन्हें पता चल गया था कि कोई उनका पीछा कर रहा है, और यही वो जगह है जहां फ्रांस मथीपा की हत्या की गई।
2: बाद में पुलिस को ये BMW जोहानिसबर्ग से 130 किलोमीटर दूर पूर्व में मिली और इसे स्पेशल फोर्सेस का बताया। पुलिस के मुताबिक कार से मिले ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि हत्या के वक्त ये कार घटना स्थल पर थी। बाद में मथीपा की हत्या क्यों की गई, इसको लेकर व्रुगेनबर्ग की अपनी थ्योरी है।
3: ये साफ है कि कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत ज्यादा अधिकार थे और उन्हीं के इशारे पर उसे मारने का आदेश दिया गया।
2: डिटेक्टिव की हत्या के मामले में स्पेशल फोर्सेस के 7 सैनिकों और एक अन्य शख्स पर मुकदमा चलाया जाना है। इनमें से 7 पर 4 अन्य लोगों के साथ मिलकर अब्दीगा को अगवा करने और उसकी हत्या करने का आरोप है, हालांकि वो आरोपों से इनकार करते हैं। बीबीसी ने इस मामले में दक्षिण अफ्रीका के गृह मंत्रालय और दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय रक्षा बल से जवाब मांगा, उनसे कोई जवाब नहीं मिला।
3: इंसाफ होना चाहिए और जिन लोगों ने ये किया है उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। क्या इससे मेरे मन को शांति मिलेगी? कभी नहीं।
0: और अब बीबीसी अफ्रीका डॉक्यूमेंट्री साउथ अफ्रीका एनाटॉमी ऑफ अ कवर अप का पहला पार्ट बीबीसी न्यूज अफ्रीका के यूट्यूब चैनल पर और बीबीसी आई प्लेयर पर देख सकते हैं, और सेकंड पार्ट आप 24 अगस्त को देख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दुनिया की कुछ और बड़ी खबरें बीबीसी ग्लोबल राउंडअप में। बीबीसी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक ड्यूक और डचेस ऑफ ससेक्स प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल अमेरिका से ब्रिटेन वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। उनके दोनों बच्चे 7 साल के प्रिंस आर्ची और 5 साल की प्रिंसेस लिलीबेट का सितंबर से ब्रिटेन के एक स्कूल में दाखिला कराया गया है। इसराइल ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में कुछ 1200 सेटलमेंट होम बनाने के लिए टेंडर निकाले हैं। जहां ये बनाए जाएंगे वो जगह रणनीतिक रूप से काफी अहम है। इसराइली सरकार ने आवेदन की आखिरी तारीख 19 अक्टूबर रखी है, जो कि इसराइली आम चुनाव से 8 दिन पहले है। इससे आने वाली सरकार को इस टेंडर को रद्द करना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका के दवा बनाने वाली कंपनियां मॉडर्ना और मर्क का कहना है कि स्किन कैंसर के किस्म के एक्सपेरिमेंटल इलाज के ट्रायल में सफलता के संकेत मिले हैं। वैक्सीन और इम्यूनोथेरेपी को मिलाकर बनी इस दवा का ट्रायल उन मरीजों पर किया गया है

0: जिनकी मेलानोमा के लिए सर्जरी हुई थी। पनामा नहर के दो पोर्ट्स से बाहर निकाले जाने के बाद हांगकांग की कंपनी सीके हचिसन ने पनामा से 1.5 अरब डॉलर्स की मांग की है। पनामा के सुप्रीम कोर्ट ने हचिसन के कॉन्ट्रैक्ट्स को जनवरी में उस वक्त रद्द कर दिया था जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिकायत की थी कि पनामा कैनाल में चीन ऑपरेट कर रहा है। इबोला से जूझ रहे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में 70,000 वैक्सीन का नया बैच भेजा गया है। वैक्सीन भेजने वाले अंतर्राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप का कहना है कि शिपमेंट में फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए 50,000 डोज भी शामिल है। डीआरसी में अब तक इबोला से 2300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और तापमान बढ़ रहा है, बर्फ की चादरें पिघल रही हैं और अब तो साल भर ये इलाका बर्फ से ढका भी नहीं रहता है। और इसका फायदा मिल रहा है ग्रीनलैंड के तट पर बर्फ पर रहने वाली वेल्स को। बर्फ हट रही है तो उन्हें खाना ज्यादा मिल रहा है और वेल्स को समंदर में खाना ढूंढने में कोई मुश्किल भी नहीं आ रही है। देखिए बीबीसी की साइंस कॉरेस्पॉन्डेंट विक्टोरिया गिल की रिपोर्ट।
1: खुले समंदर में खाना ढूंढती ये विशालकाय वेल्स। ग्रीनलैंड के पूर्वी तट के पास का ये इलाका कभी पूरे साल बर्फ से ढका रहता था, लेकिन तापमान बढ़ने और बर्फ पिघलने के साथ अब यहाँ कुछ नए मेहमान आए हैं। वो हैं दुनिया की सबसे बड़ी वेल्स। वैज्ञानिकों ने हवाई सर्वेक्षण, सैटेलाइट टैगिंग और स्थानीय समुदाय से मिली जानकारी के जरिए देखा कि गर्मियों में फिन वेल, हम्पबैक वेल और मिंक वेल अब यहाँ हजारों की तादाद में पहुँच रही हैं। इनके लिए खाना भी यहीं पहुँच रहा है। शोधकर्ताओं का कहना है जलवायु परिवर्तन की वजह से आया ये एक बड़ा बदलाव है। कुछ प्रजातियाँ इन बदलावों के मुताबिक खुद को ढाल रही हैं।
2: इससे पता चलता है कि प्रकृति किस तरह खुद को बदलते हालात के मुताबिक ढाल सकती है। कई वेल अलग अलग इलाकों में खाना तलाश कर सकती हैं, लेकिन आर्कटिक की कुछ प्रजातियां अब ज्यादा मुश्किल में हैं, क्योंकि उनका हैबिटेट लगातार सीमित होता जा रहा है।
1: हाल ही में कनाडा के सब आर्कटिक इलाके में हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें बर्फ पर निर्भर ध्रुवीय भालुओं पर जलवायु परिवर्तन का असर देखने को मिला। बर्फ के पिघलने से उनका प्राकृतिक आवास सिकुड़ रहा है और वो इंसानी बस्तियों के और करीब आने को मजबूर हो गए हैं। अब पूर्वी ग्रीनलैंड से भी चिंता है कि वॉलरस और बेलुगा जैसी प्रजातियों के लिए बढ़ता तापमान मुश्किलें पैदा कर सकता है, लेकिन फिलहाल ये वेल इन बदलते हालात का पूरा फायदा उठा रही हैं। बीबीसी संवाददाता विक्टोरिया गिल की रिपोर्ट।
0: और हो सकता है आपको भी आगे ऐसे रोबोट्स ट्रैफिक कंट्रोल करते दिख सकते हैं। चीन में ट्रैफिक पुलिस की मदद के लिए अब ह्यूमनाइड रोबोट तैयार किए जा रहे हैं, यानी ऐसे रोबोट जो इंसानों की तरह काम कर सके। और बीबीसी दुनिया में आज के लिए इतना ही। कार्यक्रम से जुड़े फीडबैक के लिए आप मुझे एक्स पर लिख सकते हैं।
3: बिल्कुल जी, ये खबर तुहानू सुना दिंदी है, नाल दी नाल ही दुनिया भर दी गल्लां तां वी पता लग जांदियां ते की मेन चल रहा सब जगह दे उत्ते वो भी सुनन नू मिल जांदा है। सो ये प्रोग्राम तुसीं मंडे, ट्यूजडे, थर्सडे, फ्राइडे शाम नू 7-8 ते संडे 1 बजे तो लैके 5 बजे तक सुनदे हो। अज दा प्रोग्राम जिहड़ा इसे तरीके नाल चलेगा। कई लोगों ने वक्रे वक्रे गल्लां बातां भी लिखी हैं। किसी ने लिखिया भी सत्य दर्पण नवा बुद्धा है, युद्ध मानता के लिए उचित नहीं है, युद्ध से मानता हार जाती है। ठीक है जी, बिल्कुल। अगर युद्ध हुआ तो वर्ल्ड वार का खतरा है, एक बार वर्ल्ड वार हो ही जाए तो ही समझें ये फेको कुछ भी नहीं कर सकता, ये सिर्फ अमेरिका को बर्बाद करके छोड़ेगा। सो ये सारिया गल्लां पता जिहड़ियां ये ट्रंप के बारे लोकी लिखते ने, ट्रंप की कुछ कर रहा है, किस तरह वो हालात बने। तुम दस दी भी ये प्रोग्राम तुसी मंडे, ट्यूजडे, थर्सडे, फ्राइडे शाम नू 7-8 ते संडे 1 बजे तो लैके 5 बजे तक सुनते हो, जिदे च मैं तुहाडा होस्ट ते दोस्त रजेश इन्हां प्रोग्राम नू लैके आना। वक्रे वक्रे दिनां दे विच वक्रे वक्रे साडे नाल गैसट भी हुंदे जिन्हां दे नाल गलबात करदे हां, प्लस कुछ खबरां भी जिहड़ियां नाल पेश कीतियां जांदियां, क्योंकि खबरां मेन जिहड़े दोस्त खबरां वास्ते वेट करदे रहिंदे ने बहुत खुश हुंदे ने जदों अक्सर उन्हां नू लगदा वी गैसट नाल गलबात कीती है, वह एक डिफरेंट होंदी है, वधिया ते लगदा ही है जदों आपां किसे दे नाल इंटरव्यू करदे हां, गलबात करदे हां, उदों दे वी इनफॉर्मेशन सारे तक पहुँचती है। बट नाल दी नाल ही जदों न्यूज़ सुनदे हां ते काफ़ी इंपावरमेंट मिलती है, काफ़ी वधिया लगता, जिदा कि हुण तुहानू पता नहीं भी अजकल सनसैट जिहड़ा 8:46 ते होना शुरू हो चुके है, अज दा जिहड़ा सूरज वह 9:45 छुपेगा, उस तों 1 मिनट बाद सनराइज जिहड़ा सवेरे 6:30 बजे होया सीगा। सो टाइम जिहड़ा लगातार वधदा जा रहा है।

0: रिपोर्ट का एक उदाहरण दूं तो उसमें बताया गया है कि सरकारी हॉस्पिटल्स के लिए वेंटिलेटर्स पे इतना पैसा खर्च हुआ, किसी हॉस्पिटल को कुछ सुविधाएं देनी थी.
1: मतलब ये पता चलता था, कभी कभी पता चलता था कि किस मद में कितना आखिरकार खर्च हो रहा है.
0: जी,
1: लेकिन अगर मैं, क्योंकि अगर आप पीएम केयर्स फंड में आप पैसा देते हैं, अब ये भी महत्वपूर्ण बात है कि विदेशों से भी आप इसमें पैसा दे सकते हैं, जबकि
0: क्योंकि एफसीआरएस एग्जेम्प्ट है.
1: हाँ, ये वहां पर जो है इससे बचा हुआ है. अब सवाल ये है कि अगर इस केयर फंड में इतना पैसा था जिसे कि आपने लगभग ना के बराबर खर्च किया, क्या इसका कंपैरिजन हम इलेक्टोरल बॉन्ड से कर सकते हैं?
0: देखिए जो एक पैरेलल लोग ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसपे चर्चा भी चल रही है वो ये है, इलेक्टोरल बॉन्ड अगर आप याद करें एक ऐसी योजना थी जिसमें ट्रांसपेरेंसी की ही कमी थी. कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी एक बॉन्ड खरीदती थी और उसमें अनोनिमिटी थी, गोपनीयता थी. ये नहीं पता चलता था कि ये किसने दिया है और किसको दिया है. जिस पार्टी को दिया जाता था उसे बस पैसा आ जाता था. तो जब वो चीजें उजागर हुई, पता लगा कि इन लोगों ने या इन कंपनियों ने इन पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा दिया, और बाद में ये भी निकल के आया कुछ इंस्टेंसेस में कि सत्ताधारी दल जो था
1: उसको सबसे ज्यादा पैसा,
0: उसे सबसे ज्यादा मिला, और क्विड प्रो को की बातें निकल के आई कि सरकार सत्ताधारी दल को पैसा मिला और उससे लिंकेजेस जुड़े कि किसी ने पैसा दिया किसी कंपनी ने, उसे कुछ दिनों बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया.
1: क्या फायदा पहुंचा?
0: वही आशंकाएं इसमें भी जताई जा रही हैं कि जब यही मालूम नहीं है कि ये पैसा कहां से आ रहा है, कौन सी कंपनियां पैसा दे रही हैं, और ये पैसा तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं जा रहा, ये सीधा सरकार को जा रहा है, तो चिंता बड़ी है कि क्या ये कंपनियां उसी क्विड प्रो को के चलते ये पैसा दे रही हैं, क्या उन्हें कोई लाभ मिल रहा है सरकार से. और चूंकि ये सब बातें सार्वजनिक नहीं की जा रही हैं, जो कहां से पैसा आया, कहां पैसा गया, इससे ये जो सवाल हैं और ये जो एक कौतूहल है ये बढ़ता जा रहा है कि इसमें अगर छुपाने वाली कोई बात नहीं है तो इन सब बातों को सरकार खुले तौर पर सामने क्यों नहीं रख देती. और सबसे बड़ा एक जो बात अतीत में रही है कि आरटीआई में इसे नहीं लाया गया है पीएम केयर्स फंड को, क्योंकि सरकार ने कहा है कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है. तो आरटीआई के जो एक्टिविस्ट हैं वो इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से परस्यू कर रहे हैं, और उनका यही कहना है कि इतना बड़ा अगर हम फंड बना रहे हैं तो उसे सूचना के अधिकार में लाना जरूरी है ताकि लोगों को पता चल सके.
2: बिल्कुल जी, ये पॉलिटिकल खबरां जड़ियां होंदियां ने, कुछ ना कुछ हलचल जड़ी है, मेन खबर चल रही है, लोगों का पूछना है ते भी की चल रहा है. बट दूजे पास आप कैनेडा वच आ जाइए, कैनेडा च प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी उन्होंने जिदा गलबात की है कि भी आप डील तो काफ़ी क्लोज है, जिते बाकी डील डन की जा रही है, नाल दी नाल उन्होंने भी कहा भी सारिया प्रोविंस के सारे प्रीमियर्स नू कि भी तुसी अपना जिहड़ी अमेरिकन लिकर है उन्होंने हूँ अपने शेल्फ से लैके आओ, तो जिहड़ी एक वड्डी लोगों की मनना, हालांकि मनिया तो यह जा रहा है कि भी एकदम तो नहीं आ जाएगी बट आ भी जाएगी, जिन्होंने रखनी है रख लेंगे. सस्कैचुअन ते अल्बर्टा ते ऑलरेडी रख के बैठे आ, ते पहला तो ही इन्हू सैल कर ही ले सके, बट ये है भी इन्हां बाकी दी जिहड़ी जगावां ने जिहड़ी बाकी दे जिहड़े एरियाज ने उन्होंने भी अपना इन्हू रखना शुरू कर देना. पर गल अगे फिर ये आ जाती भी कि डील दे विच ये सब कुछ तो हो गया, बट कि लोग हुण पीना पसंद करनगे या लैना पसंद करनगे, क्योंकि पहला तो हाले गवर्नमेंट ने या आम लोगों ने पाया, पर जो इशू हो गया तो फिर लोग किन्ने किन्ने, तुहानू पता भी कनेडियन भी जिहड़े ने वह काफ़ी कब्बे ने, काफ़ी अपने आप च डिफरेंट तरीके नाल रहन वाले आ, जे उहना दा दिल करदा उस तरीके नाल चलदे आ, क्योंकि अपने कैनेडा नू प्यार करदे. डजंट मैटर वो ये तो समझदे भी ट्रंप ने सानू इन्नी ज़्यादा ठेस पहुँचाई है या इन्ना ज़्यादा सानू झटका लाया, तो आप सारे उहदा पिंच महसूस करते ही हाँ कनेडियन होण दे नाते, कि भी ग्रोसरी स्टोरां वाले जिहड़े ने उहदे च भी कई कंपनियां जिहड़ियां ने वो अमेरिकन कंपनियां ने, बेसिकली इंटरनली सारा कुछ जो तुसीं इहनां दे प्रॉफिट देखदे हो तो मोटे मोटे प्रॉफिट नज़र आते हैं, बट एंड ऑफ द डे आम बंदे जिहड़े ने वो स्ट्रगल कर रहे ने कि भी ये सारियां गल्लां पता कह के भी टैरिफ लग गया जां महंगाई वध गई है, सारियां गल्लां जदों करदे हां आपां. अल्बर्टा दे जिहड़े गेमिंग लिकर ते कैनबिस वाले जिहड़े कहिंदे ने वो अल्बर्टा ने रिकॉर्ड 294 मिलियन डॉलर होलसेल लिकर की है, यूएस लिकर सेल्स बिटवीन अप्रैल 1, 2024 तो लैके एंड ऑफ मार्च 2025 तक, तो जड़ा कि नंबर ड्रॉप हो गया 201 मिलियन

0: समझ रहे हो, ये जगह सही नहीं है अर्जुन।
1: बिल्कुल जी, ये जगह जड़ी है ठीक नहीं है। बट एक जी अगली खबर है थोड़ी जी, वह भी तुम सुना दी है, क्योंकि ईरान इराक की वैसे तो आप गलबात कर ही लीए तो भी की कुछ चल रहा वो भी थोड़ी जी नज़र मार लें। क्विकली थोड़ी जी गलबात मैं सुना जा रहा, फिर इस तो बाद आप अपनी जर गलबात करा। इंडिया तुम पता भी ये ट्रंप जो धमकी दिता है तो फिर कुछ ना कुछ तो लोग कई बार, मैं बड़े साल पहले एक चीज समझी सी भी कुछ लोग ऐसे होंगे ने जो दूसरों को गुमराह कर देंगे ने, भी जो तुम कहते कन्विंस नहीं कर सकते तो कन्फ्यूज कर दो। सो ट्रंप का काम भी जरा कुछ इस तरीके का ही है, वो जिनी जड़ी गल है लोगों को सीधी नहीं कह सकता तो इस तरीके कर देंदा।
2: अब ये जंग ट्रंप और अमेरिका के लिए भस्मासुर साबित हो रहा है। बाइडेन की कमियों को किनाने वाले ट्रंप के दौर में अमेरिका पर कर्ज दोगुना हो चुका है, 40 लाख करोड़ डॉलर का कर्ज। और इस कंगाली की सबसे बड़ी वजह है ईरान के साथ छिड़ी वो जंग जिसने सुपर पावर की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी और कर्ज के रफ्तार को बुलेट ट्रेन की रफ्तार में तब्दील कर दिया। ईरान के साथ जंग में अमेरिका पर ऐसा वित्तीय बोझ पड़ा है कि महंगाई आसमान छू रही है और कर्ज 40 ट्रिलियन डॉलर को पार कर चुका है। हर गुजरते दिन के साथ अमेरिकी इकोनॉमी का दम फूल रहा है। सुपर पावर की इस हालत ने दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि जिस कर्ज के जाल में ट्रंप देश को निकालना चाहते थे उसी कर्ज के दलदल में अमेरिका दिन ब दिन घंटे दर घंटे धंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम की कहानी मैं आपको बताता हूं, हालांकि कर्ज पहले भी रहा लोग ये भी कहेंगे, लेकिन सिर्फ आप ट्रंप के रिजीम में अमेरिका पर कर्ज का आकलन करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा, राइट? ट्रंप के राज में अमेरिका पर कर्ज का भार बहुत ज्यादा बढ़ा। यूएस का राष्ट्रीय कर्ज पहली बार 40 ट्रिलियन डॉलर के पार चला गया है। यूएस ट्रेजरी विभाग के मुताबिक 40.047 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज हो चुका है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए इसे गंभीर चिंता का विषय बताया गया है। जंग के लिए अमेरिका ने बड़े पैमाने पर उधारी का भी सहारा लिया।

0: कर्ज बढ़ने का एक बड़ा असर ब्याज के खर्च पर भी पड़ता है। इसमें एक बड़ी भूमिका डोनाल्ड ट्रंप के उस टैरिफ के सनकपन ने भी निभाई। दुनिया भर में टैरिफ इम्पोज करना भी ट्रंप को बहुत भारी पड़ा है। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका सरकारी बॉन्ड की यील्ड करीब 2 दशकों के सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। निवेशक बढ़ते सरकारी कर्ज, महंगाई और वैश्विक आर्थिक जोखिमों को देखते हुए अमेरिकी बॉन्ड पर अधिक रिटर्न की मांग कर रहे हैं। आलम तो यह है कि कई देश अमेरिकी बॉन्ड बेचकर ज्यादा से ज्यादा सोने में निवेश करना चाहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण जापान, भारत जैसे मुल्क भी हैं। अगर 2017 की स्थिति से तुलना करें तो तस्वीर और भी स्पष्ट हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप के पहली बार राष्ट्रपति बनने के समय की तुलना में अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज दोगुने से ज्यादा हो चुका है। नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं हुआ है, अमेरिका के घमंड का भी दमन हुआ है, जिसके दम पर वो दुनिया में इतराता था।
1: बिल्कुल जी, ये ते कारण उन्होंने पहला भी बैंड बजाती सी, तो उस तो बाद फिर कारनी दुनिया च हीरो बन जाते हैं, तो ट्रंप हुने जड़े ने वो थले थले जाते हैं। एक छोटी जी ब्रेक लैने, ब्रेक तो बाद फिर आप कुछ एक होर भी खबरों से गलबात शेयर करते हैं। सबरंग रेडियो 94.7 FM।
2: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0300-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca।
3: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
4: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक, जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
3: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
4: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर।
3: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
4: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
3: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर, या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890। लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक,
4: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
5: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए। सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर, जहां होता है एनर्जी, एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन। चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं। हमारी टीम पहुंचती है आपके पास, लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में। ज्यादा पहचान, ज्यादा भरोसा, ज्यादा ग्राहक। अपने बिजनेस को बनाइए खास, दिखाइए, सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए। आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ, आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी। Monday, Tuesday, Thursday and Friday 7 to 8 p.m. Sunday 1 to 5 p.m.
6: Asia Pacific Immigration Consulting Limited. Student visa, visitor visa, super visa, LMIA applications, family immigration, provincial nominee application, ate citizenship application vich lamba tajruba te maharat rakhda hai. Tuhadi sahulat layi main Maninder Singh Tillo ate Inderjot Kaur Tillo ikko chhat hethe immigration ate insurance diyan sewawan pradan karde hain. Sanu sampark karn layi 403-225-1111. Maninder Singh Tillo, Asia Pacific Immigration Consulting Limited.
7: Regulated Canadian Immigration Consultant.
6: 403-225-1111.
5: From the heart of Calgary to every corner within a 250 kilometer reach, Sabrang Radio is connecting voices, stories and communities like never before.
8: ਤੇ ਕਦੇ ਮਾਧੜ ਬੰਦੇ ਚਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੰਦ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਓਏ ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਲੜਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੰਦ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਓਏ ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਲੜਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ।
1: ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਹ ਪਨਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ, ਵੈਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਚ ਪੂਰੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਬਟ ਆਈ ਹੋਪ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਮੰਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਥਰਸਡੇ, ਫਰਾਈਡੇ 7 ਤੋਂ 8 ਤੇ ਸੰਡੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ।
9: The time is 8 p.m. You are listening to Fairchild Radio, CHKF FM 94.7, a

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल हेलो दोस्तों हाजिर है जी थोड़ी दोस्त कुलविंदर कुकी लैके प्रोग्राम सुरसंगम लाइव विद कुकी ते मेरे तो पहला तुसी सुन रहे सी जी सब रंग रेडियो राजेश अंगराल जी दे नाल दोस्तों इस प्रोग्राम दे विच गल्लां बातां होणगियां गीत संगीत होएगा ते मेरा ते तुहाडा साथ जनाब रहेगा ठीक 9 बजे तक

0: वीकेंड पे रेडियो सुरसंगम, रेडियो सुरसंगम .ca, फोन 403-585-0910, रेडियो सुरसंगम।
1: हो सकता है कि आप इसे अब्यूज ना माने, लेकिन अपने साथी को धमकी भरे संदेश भेजना, उनकी लोकेशन को गुप्त रूप से ट्रैक करना या उनके फोन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना भी अब्यूज ही है। तकनीक के माध्यम से किया जाने वाला दुर्व्यवहार शारीरिक नहीं होता, लेकिन उसका प्रभाव उतना ही गंभीर और नुकसानदायक हो सकता है। यदि आप या आपका कोई परिचित तकनीक का उपयोग किसी को नुकसान पहुंचाने या उस पर नियंत्रण रखने के लिए कर रहा है तो बदलाव संभव है। हिंसा को समाप्त करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए alberta.ca/endgbv पर जाएं। अल्बर्टा सरकार की ओर से संदेश।
0: 94.7 FM रेडियो सुरसंगम, हर हफ्ते वी घंटे सुनो, मंडे टू फ्राइडे शाम 4 to 5, कुलदीप सिंह विचार चर्चा, शाम 8 to 9 जितेंद्र पन्नू, रेडियो सुरसंगम .ca, फोन 403-585-0910, रेडियो सुरसंगम।
2: The following program speaks to the South Asian community, uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.

0: पर लिखती कोई नहीं, जबानी जी मड़ी जी। हुण कल फिर इना कारवाई करती है, पाकिस्तान वाले ने आख्या करे जी आजादी की कदे तुहाडे वी तो होई सी, वह गैर कानूनी से भी गैर कानूनी है, आपो अपने हाई कमीशन दे लागे कोई बंदा एकदम विच आ गया वजे थोड़ा दरवाजे अगर रुकावट पाने वास्ते बैरीकेड तुसा भी लाए सी असीं भी लाए सी। अगे इदां दी कार्रवाई भारत विच इक वार होई सी इंग्लैंड दे विच, जदों भारत दे हाई कमीशन उत्ते कुछ लोग जा चढ़े भारत दा झंडा लाता उन्हें अपना लाता, उदों भारत सरकार ने इंग्लैंड दे हाई कमीशन उत्थों दी बरतानिया दी सरकार को रोस किया, ब्रिटेन दी सरकार ने रोस ना मनिया। इन्हां ने अगले दिन उन्हां दा जिहड़ा इत्थे हाई कमिश्नर सी उहदी रिहायश दे दफ्तर दे आसे पासे जिहड़े सिक्योरिटी बैरियर सी उह सारे चुक ते सिक्योरिटी हटाती। रातों रात प्रेशर इन्ना वध गया कि पाक उत्थों दी ब्रिटेन दी सरकार नूं मन्ना पिया सी
1: जी।
0: इह कार्रवाई आपो इक जवाबी कार्रवाई होंदी, तुसीं करदे हो वी करदे। सो इन्हें किया कोई खास गल नहीं, जो ना करते भी ना करते, पर पहल पाकिस्तान ने करती
1: जी। अगली खबर भी पाकिस्तान दे नाल ही जुड़ी हुई है। पाकिस्तान दी जेल च बंद साबका प्रधानमंत्री इमरान खान नूं अदालत दे हुक्म ते हस्पताल पहुंचाया गया, की कहना चाहोगे जी इस बारे?
0: गल ये है कि पाकिस्तान दी राजनीति इस तरह दी बनी है कि जिहड़ा गद्दी ते बह जांदा अपने तो पहलियां नूं रज के जलील करदा, जेल भी छुड़दा। जदों इमरान खान आया सी इहदे आउण तों पहलां ही नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे चुके गए, जज भी इहदा साथ दिंदे सी, फौज भी साथ दिंदी सी। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ तों अस्तीफा लिया गया, उहदी थां ते इक होर बनाया गया, नवाज शरीफ नूं जेल पाता गया। फिर उहदे तों बाद नवाज शरीफ जेल विच सी ते इह चोणां होईआं ते इमरान खान प्रधानमंत्री बन गया, इहने सख्ती कीती, नवाज शरीफ दी धी नूं जेल करता। बाद च नवाज शरीफ बारे पता लगा वह बीमार बड़ा, उन्हें इलाज वास्ते हस्पताल भेजना, अदालत अगों से उन्हें भेजता। अदालत तो उन्होंने आख्या जी इहदा तो इलाज इत्थे नहीं होना, इंग्लैंड जाके करवाउणा, उन्हें उत्थे भेजता ते मुड़ के वापस नहीं सी आया। खबरां आउंदियां सी कि बीमारी कोई नहीं, वह वड्डे होटलां च रेस्टोरेंटां च पार्टियां करदा, उहदियां वीडियो सामने आ गईआं ते बगैर बीमारी तो उत्थे बैठा। उदों तो बाद इत्थे हालात बिगड़न लग पए, जिहड़ी आर्मी ने मदद कीती सी इमरान खान दी उह आर्मी दूजे पासे मदद करन लग पई, उन्हां ने इमरान खान दा तख्ता पलटिया ते फिर नवाज शरीफ दे भरा शहबाज शरीफ नूं प्रधानमंत्री बनाता। चोणां होईआं, गद्दी फिर उन्हां कोल रहिण दित्ती, नवाज इहदी इमरान खान दी पार्टी दी जिहड़े मानता भी खत्म करती, कल्ला कल्ला जित्ते ते उन्होंने इकट्ठे होके पार्टी बनाउणी चाहीदी, उह नहीं बनाउण दित्ती। हुण इहदे हालत कहिंदे सी बिगड़दी जांदी, इत्थों तक वी चर्चा होई सी कि इमरान खान तां जेल च मर गया, उहो जी गल नहीं निकली। फिर इहदे परिवार दे कुछ जी गए, इहदियां भैणां तिन्न गईआं, उहनां चों इक नूं मिलाता, दो नहीं मिलाईआं, घर वाले मिलाती। अदालत दा हुकम सी तैनूं हस्पताल भेजो, राती इक वार खबर आई सी कि हस्पताल भेजता, हुण फिर ताजा खबर आउंदी पई अजे भेजा नहीं, अज भेजणा, पर सहमति हो गई भेज देणगे। ते सहमति इस गल ते वी हो गई है बाहर जाके किसी किस्म कोई बयान सरकार के खिलाफ नहीं देगा, फौज के खिलाफ नहीं देगा। ये हैरानी वाली गल है कि सहमति की खबर के नाल जिक्र यह आता कि इमरान खान की भैन दे राही सहमति जी हुई है वो सरकार नाल नहीं, फौज के मुखी जनरल आसिफ मुनीर नाल हुई है कि तुहाडे खिलाफ बाहर आके बयान नहीं दो। यानी प्रधानमंत्री भावे शहबाज शरीफ है, सरकार जनरल मनीर चला रहे, सहमति उन्हां कोल हुई है कि यह आवेगा तो बाहर आके किसी किसी को बयानबाजी नहीं करेगा। राती एक बार आ गया कि अदालत के कहने पर हस्पताल भेजता, फिर सवेरे आया कि नहीं भेजा, हुण फिर चर्चा कि अज भेज देणगे, भेजदे भी है कि नहीं पता नहीं। लगता है कि अखीरले वक्त रोक लिता गया
1: जी। अज दे प्रोग्राम दा समां इत्थे खत्म हुंदा है, पनु सब तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, तुसी विस्तार साडे स्रोतियां नाल सांझा कीता है, शुक्रिया जी।
0: जी बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया।
1: इस प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर कीता सी पंजाब इंश्योरेंस तों हरपिंदर सिद्धू ते लवप्रीत सिद्धू ने, जिहड़े कि कैलगरी दे विच लंबे समें तों इंश्योरेंस दीआं सेवावां दे रहे ने। जेकर तुसी लाइफ इंश्योरेंस करवाउणी है जां सुपर वीजा इंश्योरेंस करवाउणा चाहुंदे हो ते 403-4

फ्राइडे अगस्त 21st शाम के 5:05 हुए हैं। 94.7 FM पर प्रोग्राम संगीत स्टूडियो में हूँ शान। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड फ्राइडे इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। Beautiful summer afternoon, 27 degrees in and around Calgary, partly cloudy hai, toh isliye bahut garmi feel nahi hoti, but it is one of the finest summer Calgary evening. Sangeet, like always, loaded with information, entertainment, news of the day, topic of the week, yahan se, wahan se. चुनकर ढूंढकर आपके लिए कहते अंधेरों के आदि लोग, अंधेरों के आदि इंडिविजुअल्स बहुत देर से रोशनी को कबूल करते हैं। इंसान कंडीशन हो जाता है। एक वीडियो देखने का इत्तेफाक हुआ जिसमें चार लोग एक बेंच पे बैठे हैं, जैसे बस वगैरह के इंतजार में बैठे होते हैं। सोशल एक्सपेरिमेंट था। एक साहब गुजरते हैं और ये सोशल एक्सपेरिमेंट है तो ये सारे एक्टर्स हैं, तो एक वॉक करने वाला बंदा गुजरता है तो उनके सामने से ट्रिप करता है, तो वो देखने के सामने जगह तो साफ है। उसके बाद दो लोग और होते हैं, वो भी एक्टर्स होते हैं, वो ऐसे जैसे नॉर्मल चलते हुए जाते हैं, तो वो भी वहां जाते हैं और वो भी ट्रिप करते हैं, सेम जगह पे एक्ट करते हैं। वो जो लोग बैठे होते हैं थोड़ा हैरान होकर भवें चढ़ा के सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो उनमें से एक लेडी उठ के जाके देखती है कि यहां पर कोई ट्रिप होने वाली कोई वायर, कोई चीज, कोई स्टोन नहीं है, तो ये क्या हो रहा है। उसके बाद एक फैमिली आती है, वो भी एक्टर्स हैं, वो भी वहां पर आते हैं और ट्रिप करते हैं, एंड ये लोग और परेशान हो जाते हैं। एंड देन एन ओल्डर पर्सन वॉक्स अवे, तो वो भी ट्रिप करते हैं वहां पर। ये कंटिन्यूसली ये कुछ 4-5 मिनट ये ड्रामा रहता है और जो लोग गुजर रहे हैं वो सारे एक्टर्स हैं। दे प्रिटेंडिंग लाइक द नॉर्मल पीपल, जो रश स्ट्रीट पे होता है वो ये है। थोड़ी देर के बाद ये लोग जब उस सीट से उठते हैं तो वहां पर वेरी केयरफुली वॉक करते हैं और उनको ये लगता है कि वो ट्रिप कर जाएंगे, उन्हें ये यकीन आ जाता है कि वो ट्रिप कर जाएंगे। जब ज्यादातर लोग आपके आसपास कोई खास चीज करते हैं, कोई खास प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो रॉन्ग हो, आपको ये लगने लगता है कि ये सही है। आपका ब्रेन प्रोग्राम होने लगता है, कंडीशन होने लगता है। अंधेरा बिल्कुल इसी तरह से, जब आपकी लाइफ में, जब आपकी सोसाइटी में, आपके नेशन में अंधेरों के आदि हो जाए लोग, तो फिर रोशनी को एक्सेप्ट करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। प्रोग्राम है संगीत स्टूडियो, मैं हूं शान। आपको लेके जाना चाहता हूं एक पुराने पर थोड़े उदास गाने की तरफ।

0: Thank you, brother. Thank you very much. Come on.
1: मुझे आज गुड़ मनाने लाना है.
0: अरे क्यों?
1: नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता.
0: बेटी देखिए आप कुछ दिन आपको अच्छा लगने लगेगा. और भी तो बच्चे रहते हैं यहाँ.
1: मैं दिल्ली में नहीं रह सकता.
0: नहीं आपको यहीं रहना है हॉस्टल में कुछ दिन समझे.

0: Very good. और ये कौन है?
1: ये मैं हूँ और मेरे पापा.
0: आपके पापा चश्मा पहनते हैं?
1: हाँ.

0: ben molt. A lot more. Keep listening. Sangeet Studio, Sean ke saath. Sangeet Studio, a presentation of Express Media.
1: और एक और बहुत ही खूबसूरत गाना, बहुत शोर मचाया था, बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की थी इस गाने ने।

0: your choice, your voice. Zara Vakri type ki presentation. Full of masti, full of information. Program is being presented by Sean. Stay tuned.
1: 94.7 FM पर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं संगीत स्टूडियो. आपकी कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया. क्रिकेट की बात कर लेते हैं. पाकिस्तानी टीम पहुंची है इंग्लैंड, टेस्ट सीरीज है और पहले ही टेस्ट में खड़का दिया है इंग्लैंड ने. बहुत बुरी तरह से वन साइडेड मैच से पाकिस्तानी टीम को हराया इंग्लैंड ने. अच्छा, पिछले 5-6 सालों में हो ये रहा था कि पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस है वनडे में खराब होती थी. T20 में एवरेज थी, वनडे में काइंड ऑफ एवरेज, बिलो एवरेज थी, टेस्ट में एक्सीलेंट होती थी. जितनी टीमों के साथ टेस्ट मैचेस खेले ऑलमोस्ट सारी सीरीज जीती और नहीं तो बराबर खेली. लेकिन ये जो टेस्ट बचा था थोड़ा बहुत, उसका भी बहुत बुरा हाल हो गया. बात वही, जब मुल्क में स्टेबिलिटी ना हो, जब इंस्टीट्यूशंस खराब कारकर्दगी कर रहे हों, तो फिर लोग मेरिट पे नहीं आते, रिश्तेदारियों पे आते हैं, ताल्लुकात पे आते हैं, दोस्तियों पे आते हैं. एक खास तरह का माइंडसेट होता है जो अपने जैसे लोग अपने सराउंड करना चाहता है. एंड नतीजा आपके सामने है. अगर मेरिटोक्रेसी नहीं होगी तो नथिंग कैन बी अचीव्ड. क्रिकेट छोड़िए आप, एनीथिंग, एनी फील्ड. अब हुआ क्या, पाकिस्तानी टीम का पहला टेस्ट था. पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, 171 रन्स बनाए सिर्फ 171 टेस्ट मैच में. चलो मान लिया 171 बनाए, लेकिन दूसरी टीम भी अगर 150-200 पे आउट हो जाती तो कहते भी इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच है और अच्छी विकेट बनाई है. जवाब में इंग्लैंड ने 409 रन्स बना दिए. 409. अब पाकिस्तान को सेकंड इनिंग मिली, बहुत बड़ी लीड थी पहले की, जाहिर है तो चांस तो ऑलरेडी, मैच तो पाकिस्तान हार ही गया था. एंड सेकंड में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इवन वर्स्ट. पहली इनिंग में 171 बनाने वाली टीम दूसरी इनिंग में 135 रन बना के आउट हो गई. यूं जो इंग्लैंड है वो ना सिर्फ जीता है बल्कि क्या कहते हैं, बिल्डोज करके जीता है, क्रूज करके जीता. इंग्लैंड वन बाई एन इनिंग एंड 103 रन. ये पाकिस्तान की बहुत ही एम्बेरसिंग डिफीट रही क्रिकेट की हिस्ट्री की अगेंस्ट इंग्लैंड. तो ये थे तो क्रिकेट के हालात. प्रोग्राम है संगीत में हुशान. ड्यूरिंग द प्रोग्राम कभी कुछ कहना हो 4037171947, और आफ्टर द प्रोग्राम कभी कुछ कहना हो 4036126100 इज द नंबर जो आप याद रख सकते हैं. वेदर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं. मौसम बहुत ही शानदार है, बड़ा अच्छा समर जा रहा है. अच्छी बात ये हुई कि जुलाई

0: We want to hit you hard with hit music. Because when hit music hits, you feel no pain. Keep listening, keep driving with Sean.
1: आपको संगीत में एक बार फिर वेलकम करता हूँ 4.7 FM पर. मैं हूँ शान. टॉपिक ऑफ द वीक में जो ट्रेड टॉक्स हुई हैं कनाडा और यूएस की, उस पे बात करनी है. वो इसलिए इम्पोर्टेंट था कि 19 अगस्त के लिए ट्रंप ने कहा हुआ था कि 50% टैरिफ कैनेडियन प्रोडक्ट्स पे वो लगा देंगे जो कुज़मा से बाहर प्रोडक्ट्स हैं. और उसमें जाहिर है कैनेडा की क्या कहते हैं, कैनेडा वर स्क्रीमिंग, बिजनेसेस वर स्क्रीमिंग कि हम कहाँ पर जाएंगे. कितनी बार आप जानते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्योंकि हमारी ट्रेड डिपेंडेंसी अमेरिका पे इतनी ज़्यादा है कि हम चाहें भी तो एकदम से बंद नहीं कर सकते. डाइवर्सिफिकेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर कार्नी काम कर रहे हैं और काफ़ी सक्सेस हुई है उसमें. बल्कि कैनेडा की हिस्ट्री में इतनी जल्दी इतनी डिवर्सिफिकेशन नहीं हुई, जो 7-8% नंबर जो हिले हैं हमारी ट्रेड बाकी दुनिया के साथ, EU, एशिया, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इधर सेंट्रल अमेरिका में, मेक्सिको वगैरह, साउथ अमेरिका में. लेकिन ये ओवरनाइट हो सक नहीं हो सकती, बिकॉज 100 साल की एक डिपेंडेंसी आपकी इस मार्केट पे है. लेकिन उसका कनाडा को कंटिन्यूसली बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि कनाडा अपने पांव पे खड़ा हो रहा है. अब कमिंग बैक,

0: ट्रस्ट करने के अलावा और कोई कोई और चॉइस नहीं है आपके पास. सो जो हार्वर्ड लुटने साहब है उनके मुकाबले ये कनाडा जीता है इसमें. कनाडा की बेटर डील इसने की है एंड वी शुड हैव डन बेटर डील, ये सोर्सेज के मुताबिक. अब कनाडा का पर्सपेक्टिव ये है कि ये इमीडिएट बिगेस्ट बेनिफिट तो हुआ है, रिलीफ तो मिला है, क्योंकि हमने अवॉइड कर दिए 50% टैरिफ्स जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह रखे थे, और कनेडियन बिजनेसेस को एक ब्रीदिंग रूम, एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है अंटिल एक सब्सटेंशियल, एक प्रॉपर, एक फाइनल जो डील है वो अमेरिका के साथ हमारी नहीं हो जाती. और अब इस ट्रेड डील को लेके ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, लेकिन ये फाइनल डील नहीं है, प्रॉब्लम्स अभी भी हैं. और ज़्यादातर जो अनसर्टनिटी है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप गोल पोल चेंज कर देते हैं, यानी जिन चीज़ों पे वो आज एग्री हुए हैं और उन्होंने कहा कि ये बड़ी ज़बरदस्त है, उन्होंने अपने जो ट्रू सोशल क्या कहते हैं जहां पर वो अपनी लिखते हैं चीज़ें सोशल मीडिया पर, उसमें उन्होंने कहा कि बहुत ही कमाल की डील कनाडा के साथ हुई है, कनाडा भी जीत गया, हम भी जीत गए, दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन एंड ऑल दैट. But knowing President Trump का track record, पता नहीं कि कल वो ये कह दें कि जो कुछ हुआ है वो सब कैंसिल है, नए सिरे से डील होगी, या मैं 50% टैरिफ और कनाडा पे लगा रहा हूँ, या 75% या 100%. लेकिन जब तक ये डील नहीं हो जाती तब तक मेरा तो ख्याल ये है कि डील वील को छोड़ें, जब तक उनके अगले 2 साल गुजर नहीं जाते, उनसे रिलेटेड हर दुनिया का मुल्क, हर दुनिया की नेशन, हर इंडिविजुअल अपने टोज पे ही रहता है, क्योंकि कुछ समझ आती नहीं है कि पल में तोला पल में माशा. एंड बीइंग कनाडा नेक्स्ट डोर विद द लॉन्गेस्ट बॉर्डर और इतनी ज्यादा ट्रेड, हम तो सबसे ज्यादा हमारी नींदें हराम रहनी है जब तक अगले 2 साल प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हैं. प्रोग्राम है संगीत, मैं हूं शान. कोई तारीफ तनकीद मशवरा 4037171947 स्टूडियोज के नंबर है. आप सुन रहे हैं संगीत स्टूडियो, हर फ्राइडे को 5 PM ऑनवर्ड्स आप सुनते हैं. प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय सुर संगम रेडियो.
1: Listeners wanted for hit desi sangeet blended with news and events. Let an entertainment melt in your brain.
0: And Adnan Sami Khan ka ek purana gana Badal.
2: Badal wo aaye,
0: garmi badha. I will see you other side of this song.

another Punjabi song. मुझे लगता है कि शाजिया मंजूर बहुत ही underrated singer है. जब भी आप उनका एक गाना सुनाएं, आपको request जरूर आती है दूसरे गाने की. ना कोई शोर शराबा, ना number one होने की कोई दौड़. Very down to earth singer.

0: Ladies and gentlemen, if you have a request, please have your money ready and pull forward to the second window.
1: We're not being paid for our labor, but if you keep on listening, we might.
2: Let us carry on because, you know, many of my viewers are very excited.
3: If they can see the television.
2: No, this is radio.
3: Oh, it's radio.
2: Right. But, you know.
3: If they told me before, it's just radio. I'm not going to show up.
4: संगीत स्टूडियो जो दिल के तारों को छू जाए जो रूह को सरशार कर दे संगीत स्टूडियो संगीत स्टूडियो संगीत स्टूडियो संगीत स्टूडियो संगीत स्टूडियो
1: वेलकम बैक 94.7 एफएम पर आप सुन रहे हैं संगीत स्टूडियो एडमिंटन में बहुत ही सैड न्यूज़ हुई रेसिज्म जो हो एंटी रेसिज्म जो रेसिज्म है वो बहुत बढ़ता जा रहा है और एंटी रेसिज्म के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा जितना कि चंद साल पहले तक हो रहा है सैडली आप ये देखिए कि जो रिलीजियस प्लेसेस स्पेशली एथनिक कम्युनिटीज़ के इमिग्रेंट्स के उन पर अटैक बढ़ता जा रहा है ऑनलाइन अटैक बढ़ते जा रहे हैं और जो आप ऑनलाइन जाएँ आपको सिवाय हेट के कुछ और नज़र नहीं आता उसमें ऑल्ट राइट के उसमें बहुत सारे ऐसी तंजीमें हैं बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं अभी अल्बर्टा में जो है वो साउथ की तरफ किसी छोटे शहर में जो कम्युनिटी सेंटर था वहाँ पर जो है प्रैक्टिस की और एक्सरसाइजेस की और समथिंग सम ग्रुप जो कि ऑल्ट राइट से ताल्लुक़ रखता था या रिपोर्ट्स के मुताबिक वाइट सुप्रीमिस्ट ग्रुप थे अच्छा ये नहीं कि ये हेट जाहिर है एथनिक कम्युनिटीज जो हमारे हैं हम भी बहुत सारी हेट के साथ पैदा होते हैं रेसिज्म के साथ पैदा होते हैं बट सैडली इसमें इंक्रीज यहाँ पर बहुत बढ़ता चला जा रहा है चंद पिछले सालों में अब एडमिंटन में जो 4504 मिलवुड्स रोड पे साउथ में गुरुद्वारा था वहाँ पर अटैक हुआ है ये 1970 में ये गुरुद्वारा बना था और 1977 में उसे इनकॉर्पोरेट किया गया था अच्छा ये परमानेंट लोकेशन थी सिख कम्युनिटी की वहाँ पर एडमिंटन में जो है अब ये जो गुरुद्वारा है इस पर बड़ी फैसिलिटी है 3.2 एकड़ लैंड है मशहूर जगह है पसंदीदा लगा जगह है सिख कम्युनिटी के और गुरुद्वारों के साथ साथ यहाँ बड़ा फेवरेट प्लेस है लोग यहाँ जाते हैं और ये इट कैन अकोमोडेट अराउंड 1200 पीपल ज़ाहिर एक बड़ी जगह है तकरीबन 300 के करीब कार पार्किंग है यहाँ पर अब वहाँ पर क्या हुआ है कि वहाँ पर जो माफ कीजिएगा वहाँ पर अटैक हुआ है अब ये जो रेसिस्ट अटैक है इसके बारे में कहा ये जा रहा है कि ये स्टैबिंग की गई है लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें ज़ाहिर है फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा शामिल हो गई हैं बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है कि क्या सही है या क्या गलत है लेकिन मेम्बर पार्लियामेंट्स फेडरल मेम्बर पार्लियामेंट्स स्पेशली फ्राम सिख कम्युनिटी एंड फ्राम एथनिक कम्युनिटीज़ MLAs इवन प्रीमियर ऑफ अल्बर्टा अपोजिशन लीडर नाहिद नैन्शी सब लोगों ने इसको कंडेम किया है कि ये हुआ क्या है वहां पर एक जो जो स्टैबिंग को लेके जाहिर कहा ये जा रहा है कि एक बंदे आउट ऑफ टू पीपल आउट ऑफ थ्री पीपल कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक को शायद अरेस्ट कर लिया गया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंटिन्यूसली चल रही है हैविंग सेड दैट गुरुद्वारा कहाँ भी हो ये कैलगरी हो एडमिंटन हो ये जहाँ भी हो ये आप अगर केसेस देखिए लेटली तो आपको बढ़ते चले जा रहे हैं अभी दो दिन पहले जो कैलगरी का गुरुद्वारा साहब है दशमेश कल्चर सेंटर मार्टिनडेल में वहाँ पर एक थ्रेट आई थी बहुत बड़ी कि वी आर गोइंग टू कम टू डिमोलिश दिस और समथिंग लाइक ऑन दोज लाइन्स और पुलिस को बताया गया और उसकी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई सारी मेजर न्यूज़ चैनल ने उसे कवर किया ये वर्शिप प्लेसेस हैं ये किसी भी कम्युनिटी का हो एज लॉन्ग एज वो पीसफुली अपनी इबादत करते हैं अपना प्रे करते हैं पूजा करते हैं पाठ करते हैं वहां पर किस कोई दूसरा इंसान किसी और शहर में बैठा किसी और गांव में बैठा वो सिर्फ हेट की वजह से और हेट जो आजकल सबसे ज्यादा फैल रही है

0: मैं सीरियसली आपको बताऊं ऑनलाइन है जिस तरह की चीजें आप देखते हैं फॉर एग्जांपल इफ यू स्टार्ट वाचिंग स्टफ अगेंस्ट इमिग्रेंट्स एल्गोरिथम आपको उसी तरह की चीजें दिखाना शुरू कर देता है और आप और देखते जाते हैं और देखते जाते हैं और अगर आपके ब्रेन में फिल्टर नहीं है क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है अगर आपके ब्रेन के अंदर चीजों को एनालाइज करने की एबिलिटी नहीं है कि ये झूठ भी हो सकता है ये प्रोपेगेंडा भी हो सकता है ये मैनिपुलेशन भी हो सकती है ये अनफैक्चुअल या फैक्चुअल चीज नहीं भी हो सकती तो आप क्या करते हैं आप अपने अंदर इस हेट को पालते रहते हैं ये इंसिडेंट्स बढ़ते हैं क्यूबिक मॉस का आपको वाकया पता है फिर लंदन जो में जो अफजल फैमिली थी वहां पर जब अटैक हुआ उनको आप देख लें फिर अमेरिका में 9/11 के बाद और अब पिछले कुछ अरसे से कंटिन्यूसली सिख कम्युनिटी उनके टेंपल्स हिंदू कम्युनिटी के टेंपल्स गुरुद्वारास एंड यहाँ पर कैलगरी में जो सोशल मीडिया पे जो अटैक्स आपको नजर आते हैं कोई हमारे टर्बन वाले जो एमएलए हैं या एमपी हैं उसके आप कोई पोस्ट लगाते हैं आप उसके नीचे जाके जरा पढ़ें इतना ओपनली ब्लेटेंटली नीचे आके चीजें लिखते हैं लोग कि आपको हैरत होती है कि पीपल हैव दिस ऑडेसिटी कि वो सोशल मीडिया पे आके ओपनली लिख रहे हैं और दूसरा ये कि पुलिस इज वर्किंग हार्ड पर आर दे डूइंग इनफ मुझे पता नहीं गवर्नमेंट डूइंग इनफ मुझे पता नहीं क्योंकि अगर इनफ हो रहा होता तो ये चीजें नीचे जानी चाहिए चीजें ऊपर नहीं जानी चाहिए सो थिंग्स आर जैसे कहते हैं कि गेटिंग आउट ऑफ हैंड वेरी वेरी सैड मुसम्मत करते हैं इसको कंडेम करते हैं नो वर्शिप प्लेस शुड बी अंडर थ्रेट और अंडर अटैक ये कनेडियन वैल्यूज हैं एंड वी होल्ड दीज वैल्यूज वेरी नियर एंड डियर इसके साथ ही आपसे मेरे इजाजत लेने का टाइम आ गया ना टाइम पहले कभी रुका था आज रुकेगा आई विश ऑल ऑफ यू लव पीस रिस्पेक्ट हेल्थ एंड वेल्थ आपसे मुलाकात होगी इसी चैनल पे अगले फ्राइडे को
1: शुक्रिया आपने संगीत स्टूडियो ट्यून किया शुक्रिया
2: The time is 6 p.m.
3: Sa tagal mo nang nagmamaneho ng Corolla, naalala mo pa ba nung ganito yung pinapatugtog mo? Pero ngayon, ganito na yung playlist mo. The Toyota Corolla. Reliability mula noon hanggang ngayon. It's time to Toyota. Lease a 2026 Corolla L, now in stock from just $75 weekly for 60 months at 5.89% with $32.99 down. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
2: You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.